0: अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
1: आज मैं राजा बनूंगा।
2: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
3: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
4: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
4: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
1: हमने तो देखा है।
0: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
4: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो।
6: जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
7: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
8: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
9: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
8: चोरी।
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
8: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
9: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
9: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
8: झूठ।
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
9: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
8: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति

0: बोल उठी, ठहरू, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा को क्रोध आ गया।
1: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
4: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिया मेरा ठंडा पानी, अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
5: अरे मशकूब भाई,
6: जी जनाब,
5: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
6: लीजिए जना,
5: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
6: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
5: रखो रखो।
6: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
5: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो,
6: शुक्रिया
5: शुक्रिया।
4: अमृत वाला आ गया।
7: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मशक पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
6: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
5: मशकूब भाई,
6: जी जनाब,
5: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
6: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
5: लाओ।
6: बस बस,
5: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप। सही कहा मशकूब भाई,
6: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
5: अभी तक तो कुछ नहीं।
6: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
5: अरे नहीं नहीं
6: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
5: भाई
6: जी,
5: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
6: क्या बात करते हैं,
5: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
6: इसमें नेकी की क्या बात है?
5: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
6: ये तो मेरा फर्ज था।
5: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता

0: दादू
1: क्या क्या कहते हैं आप
2: मुजर्रब नुस्खा
0: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा
1: अच्छा
0: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो
2: ये तो बड़ा नेक काम है
0: अब ये लीजिए
2: ये किताब किस लिए
0: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है
2: अच्छा
0: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए
2: जी जी जी जनाब मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूंगा
0: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए
2: तौबा तौबा तौबा
0: वरना दवा का असर जाता रहेगा
2: जी समझ गया कभी गरीब से पैसे ना लूंगा शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा
3: अरे भाई हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है
4: जनाब
5: लाजवाब इंसान है वो
3: क्या बात करता है
5: बहुत अच्छे इंसान
6: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा जूं-जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है हां सख्त गलती की है अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए हां मैं ऐसा ही करूंगा ऐसा ही करूंगा
6: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया
7: पैसा लाए हो
5: यकीन मानिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है
7: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो
5: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब
7: चलो बच्चे को उठाओ उठाओ बच्चे को बाहर निकलो
5: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए
7: बच्चे को गोद में उठाओ
5: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
7: चलो निकलो बाहर निकलो
5: मर जाए बच्चे
7: उठाओ
5: मर जाए हकीम साहब
7: चलो निकलो बाहर
6: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा किताब गायब हो चुकी थी मरता क्या ना करता पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं
8: अमृत वाला आ गया क्या खूब रंग जमा

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हसबे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ
1: जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।

0: कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
0: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
3: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
4: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या क्या खूब रंग चमक।
3: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
4: अमृत वाला आ गया,
2: क्या खूब रंग चमक,
3: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
1: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं,
4: या खुदा माफ़,
1: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई

0: रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो साथी ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटको दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनुरोध आज आपण सकाळ रे एवं

सुबह की रोशनी से दिन रोशन हो, खुशियों से भरा एक मौसम हो। सुबह की रोशनी से दिन रोशन हो, खुशियों से भरा हर एक मौसम हो। मुस्कुराते रहो, दिल से दुआ यही निकले, सुप्रभात, आपका हर सपना पूरा हो। शुभेच्छा अभिनंदन सह म्यूजिक मित्र अनुज जनाउछि आपणंकु शुभ सकाळ। केवळ 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक रे, दिल से दिल तक।

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା କିଛି ସମୟର ବିରତି ଶୁଣିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ସ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: The Commonwealth Games।
2: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में इन दिनों एक अलग गर्मी है, मुकाबलों की, उम्मीदों की और उन सपनों की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आकर सांस ले रहे हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की पहचान किसी और के शासन के साए में डूब गई थी, लेकिन उस दौर ने हमें एक चीज जरूर सिखाई, अपने हक के लिए खड़ा होना, अपने हिस्से की जगह मांगना और उसे अपने दम पर हासिल करना।
3: आज वही भारत उसी दुनिया के सामने अपने खिलाड़ियों के दम पर खड़ा है, बराबरी से आंखों में आंखें डालकर। और जब कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पोडियम पर चढ़ता है तो सिर्फ एक पदक नहीं जीतता, उस छोटे से गांव, उस कस्बे, उस घर तक भी एक भरोसा पहुँचाता है, जहाँ बैठा कोई आम इंसान शायद पहली बार सोचता है हम भी किसी से कम नहीं।
2: और इस बार शायद इस भरोसे को नए चेहरे मिले हैं। As you know, popular sports like badminton, hockey, cricket, table tennis and wrestling are not a part of Commonwealth Games of the 22nd Commonwealth Games in Glasgow. But the absence of these sports have been a blessing in disguise for some of the lesser known sports. Para power lifting, artistic gymnastics, swimming and lawn bowls are now making headlines, and our athletes representing India in these sports are showing what they are capable of.
3: ये वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी। इस बार मंच उनके सामने है, अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली हैं।
2: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की। पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं को उठाकर एक तरफ रख देते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है। भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है।

0: इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए। इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला।
1: ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, झंडू कुमार।
0: ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार।
2: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
3: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा, वजन उठाने
2: सर देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जो पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
0: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी, पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी। नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
4: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया। इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए। सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो, लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
5: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para powerlifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
0: In the same event, Paramjit Kumar lifted 176 kgs and finished seventh.
5: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी।
6: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मेरे रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
0: हाउएवर इट वॉज अगेन अ स्टोरी ऑफ सो नियर येट सो फार। जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया, लेकिन उसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई। उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा।
5: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजमणि की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा।
0: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के आरन कलन को सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा। इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
5: अब बात करते हैं लॉन बॉल्स की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने एक गोल्ड एक सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट स्थान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
7: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
0: ऑन डे वन पुतुल सोनोवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे टू एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द चैलेंज ऑफ सेलिक अलेक्जेंडर ऑफ फॉकलैंड आइलैंड्स। इन द फर्स्ट सेट सोनोवाल वाज ट्रेलिंग, बट ही केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू टाई दैट सेट एंड देन रजिस्टर्ड एन एम्फैटिक विक्ट्री इन द सेकेंड सेट।
5: जैसा आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक

0: पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाई ब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को दो सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
1: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
2: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
0: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप थ्री की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में चौथे स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने सातवें स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
3: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में सातवें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुजिया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया।
1: जिम्नास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातीश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों के टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
0: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
1: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी तीन खिलाड़ी एक बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहाँ रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल हैं मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
4: कॉमनवेल्थ गेम ये बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी, मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेगी। बट कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ जीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरी बहन है।
1: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
5: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर, मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
1: रीना रमेश चंद्र गुप्ता।
6: मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वॉज लाइक कि हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे। आई नेवर इमेजिन कि जो मैंने एज अ फर्म ज्वाइन किया था इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
1: इरेंगबाम रितु चानू।
7: मैं राम इरेंगबाम रितु चानू, मैं मणिपुर से हूँ।
1: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की, संघर्ष की और उन सीमाओं को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
0: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
1: बॉक्सिंग में पुरुषों के 7 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत भी परखी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डट कर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां की है।
8: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल्ड आने हैं।
1: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर, एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर बढ़ती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनुवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।
0: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतर

0: करने वाले हैं आर्यन नेहरा और धक्षण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। धक्षण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
1: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़ते शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
0: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
1: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है, जिनके 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत मिलाकर कुल 6 पदक है। ऑन द थर्ड स्पॉट इज होस्ट स्कॉटलैंड विद 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स, टोटल मेडल्स 4। इंग्लैंड हैज 1 मोर, दे हैव 5 मेडल्स इन टोटल। हाउएवर दे आर प्लेस्ड एट नंबर 4 बिकॉज दे हैव 1 लेस गोल्ड मेडल दैन स्कॉटलैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेशंस, साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन टू ऑल्सो विन अ गोल्ड मेडल। विल इंडिया बी एबल टू क्लाइंब अप द टैली एंड गेट ऑफ द मार्क इन द गोल्ड मेडल एंड द सिल्वर मेडल कॉलम? वी विल नो सून।
0: हर दिन कोशिश जारी है। भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए।
1: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: The Commonwealth Games.

0: परवर्ती कार्यक्रम रिले गरी प्रचार गर्छु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रहरु।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए

0: आने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर आप तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी, ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows.
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: Not the result of any deliberate action by India.
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में

0: कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदला।

0: कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday,

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरे एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800-3454-718 रे जोगाजोग करंतु।

0: चलो मिलते हैं आपके फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। तो चलंतु आपण भी कहंतु जदि सुजोग मिले आपण केउ फेवरेट व्यक्तित्व को सहित देखा करिया को चाहिबे आ देखिन बाकी करछन कॉल। हेलो
1: हेलो
0: हाँ हेलो किए कहते कौटू कह
1: नमस्कार
0: नमस्कार उर्मिला सुधा षडंगी रु
1: आज्ञा
0: अच्छ
1: बढ़िया
0: अच्छी गाड़ी चली
1: अच्छा
0: आज टॉपिक कौन कह
1: निश्चिंत कहबी जेहेतु आकाशवाणी भल पाऊ सब आकाशवाणी श्रोता भाई भी तो अनेक श्रोता भाई भी देखी सारिचु आरजी मान भी देखी सारिचु जो चिठी पत्र दौलु अनुभव कर आकाशवाणी गोटे कौन आम चिठी सब केमी जाए सब थुआ हूँ जगह देखू मानते भल लगे मानते बहुत जगह चिठी पत्र दौ ना कौ रूम गोटे छुआ तो देखिए कितने चिठी छुआ कौन है से गोटाक निश्चिंत छाला देखार हुए तो जाती सुजोग पाइनी से रूम को जीवन आशा अच्छी देखिया एवं तो चिठी पत्र जुग धीरे धीरे पलैला चिठी आकाशवाणी जानते।

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिटरी प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाति। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदा रो 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

ट्यून करिसेंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकको दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रहिछ जे ए सकाळरे आपणक साथीरे कथा हेउछे हमें दिल से दिल तक कथा जेतेबेले हृदयर सेतेबेले मन भितरे ना নানা প্রকার রঙর ভাবনা সবু বহি চলে আন কেতবে বহকি যায় জমা জনা পড়ে এই যেমতি এই গীতরে

वेलकम बैक टीम कच्चन मेज गली हो 100.4 अगस्त फणे पंदेन बकटक दे चलेल तक रेडियो हम सुबह सागर अछि आपन को सहित सो चलची कलाकार आ कलाकार रे आज हमें कथा होचे रणबीर सिंह के संपर्क रे। फ्रेंड्स, रणबीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 मुंबई रे। तंकर पूरा नाम होचे रणबीर सिंह भवनानी। छोट बेलू नाटक हो, मंच अभिनय हो, सिनेमा प्रति तंकर बहुत आग्रह थिला। अभिनयर स्वप्न को साकार करिया पई से निजो को निरंतर प्रस्तुत करथिले। 2010 मसीह रे यशराज फिल्म्स रो बैंड बाजा बारात चलचित्र रो बिटू शर्मा को चरित्र रे रणबीर सिंह रो आत्मविश्वासी अभिनय दर्शक को मन जीतिथिला। आउ प्रथम फिल्म रो से प्रमाण कर देले जे से केवल नुआ मुह नुए जणे प्रतिभाशाली अभिनेता।

0: प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निजो छत उपरे सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
2: हर घर सूर्य घर
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: हिताधिकारी एपर्यंत 12 कोटी ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जायछि जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान आप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 145555 नंबर को कॉल करंतु
1: ट्यून को चिन्ह म्यूजिकल इयर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकटक तिल से तिल तक स्टूडियो गुडरे मध्यान 12टा एबे सुनतु सुनिबा हमरो इनिशिएटिव द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुर्ग क्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि

0: कि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर।
4: हाँ,
3: और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल

0: देखे?
1: वाह,
0: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर है। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
1: हाँ ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रही थी। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
0: मित्र कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
1: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
0: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
1: हैं? वो कैसे?
0: अरे भाई मैं समझाता, आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
1: हाँ कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
0: वो कैसे?
1: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
1: ये तो है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुँचे तो सही।
1: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
1: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
1: चलो।
2: तो साथियों हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे, उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
0: अरे अरे अरे अरे ध्यान से।
1: चलो
0: संभल कर संभल कर,
1: कहीं गिर ना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
0: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए

0: कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता।

0: संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अजीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है।
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे।
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है, नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या।
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ। बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है।
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली,

0: वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
1: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहाँ ठीक से रच बस गई होंगी।
0: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत की नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। हाँ, नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब?
1: हाँ, आप
2: लीजिए जनाब।
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: अभी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: सुनते ले एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हे प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी।
1: अरे राजू भाई पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक ट्यून करछन म्यूजिकल हियर 100.4 आकाशवाणी एफएम लाइन बगडक देंचे दिल तक रेडियो एम से पर सागर छ आपन को सहित स्टूडियो घटरे समय गोटाय बाजी 11 मिनट 48 सेकंड समय हिचे आरंभ करबा प्रोग्राम आज चर्चा रे फ्रेंड्स केबे ध्यान दैछन कि आमे घरे समस्तंग सह रहउचे किंतु सतर कोण आमे समस्तंग सह रहिछे एकाडी बसुचे किंतु समस्त हाथ में गोटे गोटे मोबाइल एकाडी खाऊचे किंतु कथा होने एकाडी रहुचे किंतु मनर दूरता दिन को दिन बढ़ी चलती आज आम पाखे दामी फोन अच्छी दामी गाड़ी अच्छी सुंदर घर अच्छी किंतु परिवार सह निर्विघ्न अधघंटा बसिया क्या पाखे भी समय अच्छे कि ना बोध हुए ना आम भावे आज व्यस्त अच्छे काली समय देवी किंतु जीवन सबुबले काली के अपेक्षा करें हाँ तो आज चर्चार विषय ये कि आज व्यस्त जीवन रे परिवार पे समय देवा केते जरूरी क्वेश्चन आउ थे कही रखुची आज व्यस्त जीवन रे परिवार पे समय देवा आम केते जरूरी जदि आपर बहुमूल्य मतामत मो सहित सेयार करने को चाहते लिखते एफ एम आर सी कौन लिखा चाहते लिखिक पठाई दिखा 9495963210 को आपड़ मत ह्वाट्सअप करें आम ह्वाट्सअप नंबर 8895254200 क्वेश्चन आउ थे कही रखुचे आज व्यस्त जीवन रे परिवार पाई समय देवा केते जरूरी स्टे ट्यून्ड

0: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत उपरे सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: ओडिशा सरकारक समयबाय विभाग तरफ रु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चिनाबादाम हळदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्त निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकू पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

वेलकम बैक टू उनको चंद म्यूजिकली और 100.4 आगस पने पमरेन बोकड़क दिल से दिल तक रे रेडियो हम से पर सागर अच्छे अपन को सहित सो चल जी आज ही चर्चा रे फ्रेंड्स को जाए कि गोटे घर घर केवल ईटा सीमेंट आउ रंग रे तैयारी हुए नहीं घर तैयारी हुए समय स्नेह आउ संपर्क रे किंतु आज व्यस्त जीवन में आम घर पर सबकि किणुचे हेले घर लोक समय किणी पारू ना

0: Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Chandu Kumar, clinched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को

0: निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और

0: विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦେଲତାକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ଭାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ट्यून कुछ चुनी म्यूजिकल यो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छे आप लोगों सहित स्टूडियो घर रे समय 2:45 बजे 45 मिनट सुनिबा के तुरी पुरणा उड़िया कथा चित्र गीत कार्यक्रम रो प्रथम गीत टी उल्का चलचित्र रु सुरेश वैद्यकर कंठ रे

0: गोटे समय दयानिधि सामंत घर लोक कुड़कुड़ दास बोली डाकुथिले काहेकि ना लाइट पंखा चलिबार देखिले समस्त चिलाउथिले
1: अरे रामू ए पंखा काई चलीछि बिजुली बिल कोन तो बापा दबो
0: किंतु आज समस्ते प्यारेलाल डाकुछन्ति काहेकि ना जेबेठु से सोलार पैनल लगैछन्ति सेबेठु मीटर कंटा भी निश्चिंत रे सोइछि आउ दयानिधि सामंत
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु पीएम सूर्य।

वेलकम बैक चुनकोचुन म्यूजिकल यूज 100.4 आकाशवाणी पर मरेन बकड एक दल से दल तक रे रेडियो हम सफर सागर छ आपन को सहित सो चलची मो देश आ मो देश रे जे मे कथा होची लोक संगीत रो आकर्षण से संपर्क रे फ्रेंड्स लोक संगीत जन्म माटी रो मनीष जीवन रो चाष कम पर्वपर्वाणी में बहुत उत्सव जन्म एवं अन्यान्य सामाजिक अवसर में लोक मैंने निजर सुख दुख आशा आकांक्षा और अनुभूति को गीत मध्यम प्रकाश कर लोक संगीत रही गोटे स्वाभाविक सरलता आओ आत्मीयता लोक संगीत कथा कहले दासकाठिया पाला घोड़ा नाच संबलपुरी लोकगीत रजगीत कंध और सांताली संप्रदायर लोकधुन आम सांस्कृतिक औश्वर्य गोटे विशेष अंश प्रत्येक गीत आमको आम माटी सहित निहत भाव जोड़ रखे

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे। पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।

वेलकम बैक ट्यून क्रिश्चियन म्यूजिकल यूज 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर अच्छा आपन को सहित सो चलची मोदेश अमोदेशरी आज हम कथा होची लोक संगीत रो आकर्षण से संपर्क रे फ्रेंड्स लोक संगीतर सबुठारु बड़ आकर्षण होची यार सरलता एथिरे माटीर महक रही गाँ जीवनर चित्र रही प्रकृति सह मनीषर संपर्क रही तेणु एही गीत पीढ़ीरु पीढ़ीकु मौखिक परंपरा सहित बंची रही आज डिजिटाल जुगरे मध्य लोक संगीतर लोकप्रियता कमी नहीं बर अनेक युव कलाकार पारंपरिक लोकधुन को नुआ ढंगरे परिवेषण कर देश आउ विदेश पहुंचाउछन्ति यह आम संस्कृतिर संरक्षण सह नुआ पीढ़ी को निज मूल सह जोड़ी रखिछि।

वेलकम बैक ट्यून कुछ चंद म्यूजिकली और 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोगड़क दिल से दिल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छी आप सहित सो चल ची मो देश फ्रेंड्स लोक संगीत केवल गीत नुहे यह एक समाज जीवनशैली इतिहास आस्था एवं सामूहिक समृद्धि दलिल यह आमको आम मूल उत्स को फेरवाक सिखाए एवं भारत एकतरे विविधतार संदेश को आहरी सुदृढ़ कैसंतु आम समस्ते लोक संगीत को भल पाइबा शुणा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सो चली छी सुरीला आफ्टरनून आपनक सहित सुबह अच्छी एंड आपन माने सुन छंती सहित स्मिक चारी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटको फ्रेंड्स फैमिली एवं आम यार दोस्त मानक सहित मिसी खाइबा एंड मजा करबाटा आम लाइफ रो सबठू बड़ संपत्ति फ्रेंड्स आम लाइफ जिते भी आग को बढ़ी जाऊ जिते भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊ ए सब संपर्क को नहीं बंचिबा ही सबठ बड़ धन होता है आम जीवन समस्त मिसी एकाठी बसी हसिबा आ गपिबा ए सब आम मनर सब एंजाइटी सब दुख को दूर कर पिलामानंकर हस आउ बड़ मानंकर आशीर्वाद बस गोटे घर को बनी दी थाए स्वर्गपुरी सो फ्रेंड्स अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिर हो और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए आखिर तक।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I am talking about gentle parenting. क्या होती है gentle parenting? क्यों हो रही इतनी popular? आजकल के digital दौर में बच्चों के परवरिश करना भी एक challenge बन गया है. ऐसे में भी अब gentle parenting काफी चर्चे में है. इसे celebrities भी अपना रहे हैं. चलिए आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जेंटल पेरेंटिंग क्या है, इसे कैसे अपनाएं और इसके फायदे क्या होते हैं. आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने बच्चों की परवरिश को भी मुश्किल बना दिया है, तब माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैसे बने अच्छे पेरेंट्स, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें लेकिन बिना डांटे या मारे, कैसे उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जहां वो खुलकर बात कर सके और साथ ही जिम्मेदार भी बने. इसी सवाल के जवाब में एक नया ट्रेंड सामने आया है जो है जेंटल पेरेंटिंग. कई मशहूर सेलिब्रिटी पेरेंट्स भी इस स्टाइल को अपना रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैशन है या ट्रेंड है? वाकई में बच्चों के बेहतर परवरिश का रास्ता है या? आइए विस्तार से समझते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है और क्यों ये स्टाइल इतनी पॉपुलर होता जा रहा है. आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. ये एक ऐसी परवरिश जिसमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं बल्कि समझदारी, संवेदनाशीलता और सम्मान से पेश आया जाता है. ये तरीका कहता है कि बच्चों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाया जाए, उनकी फीलिंग्स को सुना जाए और उन्हें इमोशनल तौर से सेफ माहौल दिया जाए. इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जाता है बल्कि उसके व्यवहार को समझकर और उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए गाइडेंस दी जाती है. अगर बच्चा जिद कर रहा है या गुस्से में है तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी फीलिंग्स को पहचाना जाता है. जैसे मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें अभी वो खिलौना चाहिए था, चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं. तो दोस्तों क्या आप कभी सोचे कि जेंटल पेरेंटिंग क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर? इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देती है ये जेंटल पेरेंटिंग. बच्चे खुद को माता पिता के करीब महसूस करते हैं जिसे रिश्ते में गहराई आती है और बच्चे भी ज्यादा विश्वास के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है. जब बच्चों को उसकी बात कहने का

मौका मिलता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनता है। उसे पता होता है कि उसकी बात मानी गई है या नहीं, कम से कम सुनी जरूर जाएगी। डर के बजाय समझ से नियम सिखाते हैं। ट्रेडिशनल सख्त पेरेंटिंग में बच्चे अक्सर डर से सही व्यवहार करते हैं, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में वो खुद समझते हैं कि कौन सा व्यवहार क्यों गलत है। मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है ये जेंटल पेरेंटिंग। ये स्टाइल बच्चों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसकी मदद से उन्हें कम तनाव होता है और इमोशनल रूप से वे ज्यादा स्थिर होते हैं। क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों को कुछ भी करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जेंटल पेरेंटिंग में भी रूल और ब्रांडिंग होती है, लेकिन उनका पालन साझा या डर से नहीं, समझ और सहयोग से करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो उसे डांटने के बजाय ये कहना, मुझे पता है अभी तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन खाना जरूरी है ताकि तुम हेल्थी रहो, चलो चलो साथ बैठकर खाते हैं। बच्चों के बात ध्यान से सुने, भले ही वो छोटी सी बात क्यों न हो। तुम गलत हो कहने के बजाय पूछो, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। गलत व्यवहार पर गुस्से के बजाय ऑप्शन दे, ऐसा नहीं, ऐसा करके देखो। जो व्यवहार आप उनसे चाहते हैं, पहले खुद अपनाएं। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने के लिए पेरेंट्स तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही तरह का पेरेंटिंग स्टाइल कारगर हो। कई बार एक ही बच्चे पर अलग अलग पेरेंटिंग तकनीक अपनानी पड़ती है। ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। पहले के समय पर पेरेंटिंग का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता है, लेकिन अब ज्यादातर पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में इसे सुनेंगे आपके आरजे चेतन से। पारंपरिक पेरेंटिंग स्टाइल में जब बच्चा कुछ अच्छा करता है या अच्छा व्यवहार दिखाता है तो उसे शाबाशी और गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ बुरा करता है तो उसे डांट दिया जाता है और कुछ मामले में बच्चों की पिटाई तक हो जाती है। हालांकि जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के भावनात्मक जरूरतों और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इसमें बच्चे के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल बनाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले पेरेंट्स बच्चों को सख्त सजा नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को उसकी भावनाओं को समझकर ठीक तरह से व्यवहार करना सिखाया जाता है। जब आप अपने बच्चों की जरूरत और भावनाओं को सुनते हैं और सहानुभूति और समझ के साथ जवाब देते हैं तो आप उन्हें उसी तरीके से बातचीत करना सिखा रहे होते हैं। जेंटल किंग आपके बच्चों को हेल्थी और सही तरीके से अपनी भावनाओं को पहचाने और व्यक्त करने में मदद करती है। ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। जेंटल पेरेंटिंग एक दयालु दृष्टिकोण है जो बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने और उनका पालन पोषण करने पर केंद्रित है। इसके मूल में यह माता पिता और बच्चों के बीच सहानुभूति, सम्मान और सकारात्मक संचार पर जोर देता है। इस पालन पोषण दर्शन का उद्देश्य बच्चों को एक सहायक, अहिंसक और समझदार माहौल में बड़ा करना है। सौम्य पालन पोषण बच्चों को उनके अपने विचारों, भावनाओं और अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के रूप में पहचानता है। यह उनकी स्वच्छता को महत्व देता है और उनकी उम्र और समझ के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का प्रयास करता है। चिल्लाना, पिटाई या टाइम आउट जैसे दंडात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय सौम्य पालन पोषण सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, पुनर्निर्देशन का उपयोग करना और तार्किक परिणामों को नियोजित करना शामिल हो सकता है, जो शर्म या डर पैदा करने के बजाय मार्गदर्शन करता है। सौम्य पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चे के दृष्टिकोण पर सहानुभूति रखने का प्रयास करते हैं। व्यवहार और जरूरतों के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझकर माता पिता अधिक प्रभावी ढंग से और दयालु पूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुसंगत नियम और सीमाएं स्थापित करने से बच्चों को सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना मिलती है।

ताकि ये सीमाएं बच्चों के व्यक्तित्व और विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति और लचीलेपन के साथ निर्धारित की जाती है। सौम्य पालन पोषण माता पिता को बाल विकास, प्रभावी संचार और उम्र उपयुक्त अपेक्षाओं के बारे में लगातार शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये संयोगात्मक समस्या समाधान को भी बढ़ावा देता है और माता पिता को संघर्ष या मुद्दे के समाधान खोजने में बच्चों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये एक नया टर्म है, ट्रेंडिंग है, जेंटल पेरेंटिंग। दैट वाज ऑल अबाउट जेंटल पेरेंटिंग इन टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: सो फटाफट नहीं जीबा ये कॉल टी देखना बाकी अच्छा आ कौट अच्छा हेलो गुड आफ्टरनून किए कहते कौट कहते
1: निद आसे ना आखि को तुम भी ना निद आसे ना आखि को तुम भी ना तुम्हें मोर षोड़शी सुन है ना तुम ओटू झरे मऊ झरणा तुम ओटू झरे मऊ झरणा से झरणा स्नान करने को मन हुए आनमना हृदय भरी दिए अपूब उन्मादना हृदय भरी दिए अपूब उन्मादना तुम्हें मोर रूपसी राजजेमा तुम्हें मोर प्रियसी प्रियतमा नमस्कार एंड गुड इवनिंग गोपपुर निश्चिंत कोइली कटक रु चंद्रकांत पुष्टि
0: चंद्रकांत भाई आम शो को वेलकम आपण वर्षा होना नहीं तो पूरा आप कवित ही भिजेई दे बाकी आपट वर्षा हो नहीं
1: आम एपट तो वर्षा होता कि सका वर्षा होता चार वर्षा होता छाड़ जाए
0: अच्छा तो कौन कह आज टॉपिक विषय वर्षा पा को साहित्य रखी यूज कर
1: निश्चिंत वर्षा पा की जदि मुझे यूज करेनि कि मो मामा जी सी बहुत यूज करती तो जिते बर्तन मानते भात खिया सरे गादावली से वर्षा पा की रखी था बाल्टी से पाने बासन मजा हुए सहित लुगापटा असना लुगापटा सफा करती से पाने आउ ता पा की

नमस्कार इतिले मोहिनी भोनी एवं शेयर करले तंकर थॉट बट समय रो पाबंदी जको प्लीज प्लीज प्लीज मो हाथ छोड़ी आपण मन को रिक्वेस्ट करू छी जेहेतु डायल इन लाइव चिटचैट रे हमें आपण को पाको को टॉपिक आन के आसु छ सो प्लीज आपण टॉपिक विषय रे ही आपण को मतामत हम सहित शेयर करंतु सो नि जेबा हमरो नेक्स्ट कॉल टी।

0: ଏଫ୍ଏମ୍ ଶୁଣି ପାରୁନଥିବେ ଜାଣିଛି, ହଁ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ପାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏତିକି ଭଲ ଟପିକ ରଖିଛନ୍ତି, ବାସ୍
1: ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। सो इतिले लास्को तापस भाई आम सहित कनेक्ट होते एंड आम सहित शेयर कले कि एवं लोक अच्छा जो मैंने आम सहित मानते वर्षा पा को यूज कर दैनन्दिन चलनी चलुंट। सो आपण मैंने वर्षा पा को यूज करतु एवं सैती रखु और निजर जो दैनन्दिन कार्य रही यूज करतु एंड सफिसीयंटली गछ लगातु जहाद्वारा आम शुद्ध जल शुद्ध पानीय पाई। सो आज जो मैंने आम सहित कनेक्ट होते डायलिन लाइफ चिटचाट्रे समस्त ढेर सारा प्यार बरा थैंक यू एंड जो मान जहाँ भी मीठा मीठा अभियोग रही समस्त रियली रियली सॉरी। सो ये ही रखुच्छे आज डायलिन लाइफ चिटचाट को आउ के डायलिन लाइफ चिटचाट्रे आपण मान सहित कथा पुणी थे नुआ टॉपिक सहित।

नमस्कार, न्यूज हेडलाइन्स सह मुसुकन्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूंक रोमानिया गस्त अवसरें रोमानिया रो नागरिक एवं प्रवासी भारतीय माने उत्साह सहित पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन कर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज मंत्रिमंडल इस्तफा देते संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम श्री प्रधान उल्लेख कर जीवन छात्र शिक्षक एवं शिक्षार संस्कार समर्पित रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में देश सेवा करने सुजोग मिलव से प्रधानमंत्री कृतज्ञता ज्ञापन कर देशवासी आसंता मन की बात कार्यक्रम में भाव विनिमय करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। तीन मैच विशिष्ट टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट सीरीज अंतर्गत आज हरारे खेल भारत और जिम्बाब्वे मध्य द्वितीय मैच पुरी आज हरिशयन एकादशी तिथि सुनावेश श्रद्धा को दर्शन दे महाप्रभु सुनावेश अवसर में श्रीक्षेत्र लक्षाधिक श्रद्धा आगमन हो दृष्टि रखि पुरी में ट्राफिक जनगहली और भीड़ को नियंत्रण करने समस्त प्रकार व्यवस्था कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देते श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कर भक्तों पर गुरूत्वपूर्ण सूचना भुवनेश्वर पुरी अभिमुखे जानवाहन संख्या वृद्धि पावे लगी मालती बाटपुरी वर्तमान अपेक्षा समय प्राय 2.5 घंटा 3 घंटा रे पहुंचे छे। पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई छे। प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य कटक भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर जगत सिंहपुर और केन्दुझर जिले में अतिरु अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर आसंता 4 दिन राज्य में वर्षा लग रहा वर्तमान न्यूज हेडलाइन से परवर्ती न्यूज हेडलाइन शुणिपारे संध्या 7 समय रे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्रीराम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

सुनचंती सहदस्मिक चारी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आज प्रभु श्री जगन्नाथंक सुनावेश सुनारे सजे हिचंती कोटी ओडियार मौड़मणि श्री जगन्नाथ श्री प्रभु चरण कमल रे प्रणाम जणई आरंभ करूछु भक्ति इतर कार्यक्रम आराधना।

नमस्कार, न्यूज हेडलाइन्स सह मु सुकन्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूंक रोमानिया गस्त अवसरें रोमानियार नागरिक एवं प्रवासी भारतीयमाने उत्साह सहित पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन करिछन्ति। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज मंत्रिमंडल इस्तफा देइछन्ति। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम श्री प्रधान उल्लेख कर जीवन छात्र शिक्षक और शिक्षार संस्कार समर्पित रही। केन्द्र सरकार और सीजेपी मध्य तृतीय राउंड बैठक में सीजेपी समस्त दावी को सरकार स्वीकार कर संस्कार पांच सूत्री परामर्श नहीं आलोचना कर सरकार प्रतिश्रुति परे सीजेपी आंदोलन प्रत्याहार कर। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतियोगी आसंता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाव विनिमय करेंगे। संस्कारमूलक पदक्षेप स्वरूप एनटीए पक्ष विभिन्न स्तर में वृत्तिगत पदवी निजुक्ति विज्ञप्ति जारी होई। भुवनेश्वर आज आरंभ हो सर्वभारतीय जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट। भुवनेश्वर स्थित रवींद्र मंडपठारे ओडिशा साहित्य एकाडेमी अणस्तरीतम स्वनक्षत्र दिवस पालित होइछि। विधायक बाबू सिंह कार्यक्रम को उद्घाटन करि ओडिया साहित्य और संस्कृति विभिन्न दिग उपरे आलोकपात करथिले। खोर्धा गंगपड़ा छक सड़क दुर्घटन दुई जन मृत्यु घटन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश कर मृतकों परिवारवर्ग को समवेदना जणाइबा सहित मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 4 लाख टंका सहायता राशि घोषणा कर। न्यूज हेडलाइन से परवर्ती न्यूज हेडलाइन सुनिपारे राति 8:00 समय रे।

updates. So, आपणक पई गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा. मन की बात शीर्षकरे भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीकर देशवासीक उद्देश्यरे उद्बोधन शुणीपारे चलित जुलाई मास 26 तारीख रविवार दिन 11 समय आकाशवाणीर सबु केन्द्र विविध भारती सेवा डीटीएच सेवा एफएम रेनबो सेवा एवं आकाशवाणी अधीनस्थ पांचटी गोष्ठी बेतार केन्द्रे प्रधानमंत्री मनर कथा शुणा मिल राज्यर समस्त आकाशवाणी केन्द्रर ए मन की बात्र ओडिया भाषांतर प्रचारित हेबो सही दिन 26 तारीख रविवार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीकर देशवासीक उद्देश्यरे उद्बोधनर ठिक परे परे एवं पुणि थरे सही रविवार राति 8 समय जेउ श्रोतामाने मन की बात्रे निज निजर मत व्यक्त करबाको चाहन्ती सेमाने प्रधानमंत्री कार्यालयर वेबसाइट mygov.in रो टोल फ्री नंबर 1800117800 रे फोन करी सेमानंकर मत रेकर्ड करिपारिबे मत रेकर्ड करिवारे नंबर टी आउथरे कहि रखुछि 1800117800

0: गोटे समय दयानिधि सामंत घर लोक कुड़कुड़ दास डाकुले कहीं लाइट पंखा चलार देखिले समस्त चिलाऊ थे
1: अरे रामू ए पंखा कहीं चली बिजुली बिल कौन तो बापा दबो
0: किंतु आज समस्ते प्यारेलाल डाकुछंती कहीं जेबेठू से सोलार पैनेल लगेठू मीटर कंटा भी निश्चिंत सोई आउ दयानिधि सामंत
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

Basically yours 100.4 Akash Bani FM Rainbow Katak Dil Se Dil Tak. स्टूडियो घड़ी बाजि सारी संध्या 7:25 आरंभ हो जाए रेनबो घड़ी शो संध्या आसर आपण मान एसएमएस सान म्यूजिक सहित जमीब आसर मान आरंभ हो जाए संध्या आसर सो आपण मान एसएमएस करिवार टाइम हो जाए सो आज जदि रही आपण मान भितर कहार बी बर्थडे या फिर आपण मान नियरर एंड डियरर मान रही किसी विश करिवार सो फटाफट एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिया आपण मेसेज पठाई दिंतु सो आरंभ करिबा संध्या आसर एसएमएस करिबा पई फोन एसएमएस बॉक्स को जाई टाइप कर दियंतु एफएमआरसी स्पेस दे लिखि दियंतु आपनकर मेसेज टी पठे दियंतु नंबर 09495963210 रे एवं हमरा व्हाट्सएप नंबर हिउची 8895254200 जल्दी जल्दी पठांतु आपनक मनर कथा सेतवळे जाय आपनकर जर्नी को कर दउची पूरा म्यूजिकल आपनक पखर पहुंची दउची केतडी बहुत ही खास गीत सो स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

ट्यून करी छे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक एंड सो चली छी संध्या असर एंड संध्या असर रे जोड़ी ही गलनी आपण माने सो आपण कर मेसेज आसी पहुंची जे छी सो देखने बा के करी छेंती मेसेज टी

So friends, I'm SST, Asichi, Ava, Sen, Sudam Sen, Rajkumar Bharadwaj, Bimal Srivastav, Manish Sharma, Ebang, Alisha, Alisa Appa, Tamanna Reddy, Rajdeep Rai, Ruchika Rai, Tata Steel Plant Ru Lekhichanti, Subhi Appa, Good Evening, Namaskar, Jai Jagannath, Tata Steel Parivar Tarafru, Odisha Vasinko, Pyar Vara, Namaskar, अपायजी आम ऑफिस स्टाफ जगदेव राजपूत का हापी वाला बर्थडे से दिल से दिल तक धन्यवाद जनदेबे नियति भावे आपणकर स्टाफ जगदेव राजपूत को बर्थडे रो ढेर सारा हापी हापी विशेस लिखिछन्ति दुनिया पई पदे जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जो पास है उसे संभाल के रखना क्योंकि कोई एक बार खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता वाह वाह वाह बहुत सुंदर था ये एंड लिखिछन्ति अपा जी हमें छुट्टी रे पुणे आम घर को चली आसीछु नमस्कार अपा ओ टुना भाई मुना भाई रमेश भाई उर्मिला अपा चांद भाई रोहित सेन सुदाम सेन अमित सेन करण सेन को मध्य वेरी वेरी गुड इवनिंग सो समस्त जदि आम कार्यक्रम सुनुथिबे ताले समस्त पाखरे आपनकर ई मीठा मीठा विशेस गुडी को पहुंची जाइथिबो कनेक्ट ही सोमनाथ साहू जिगरण पटामुंडाई केन्द्रापड़ा लिखिछन्ति नमस्कार जय श्री जगन्नाथ एंड हैव अ ब्लेस्ड सैटरडे इवनिंग टू एफएम रेनबो फैमिली एंड ऑल स्वीट स्वीट लिसनर्स मे योर हार्ट फील लाइट योर स्पिरिट रिफ्रेश्ड एंड मे टुडे ब्रिंग स्पेशल मोमेंट्स ऑफ लव एंड लाफ्टर महाप्रभु जगद्रनाथ जगन्नाथ आपण को आपण

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसांतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु।

संध्याश्री आसी जाइछि आउ किछि मेसेज तो लिखिछन्ती जय जगन्नाथ जय मा तारिणी समस्त श्रोता और आर्जे मानंकु भगवान खुशी रखंतु आजर शुभ संध्या जणाउछि आकाशवाणी श्रोता परिषद ओडिसा रो समस्त श्रोता और भाई भोनी मानंकु आपणंकु मध्य शुभ संध्या जय जगन्नाथ सोय मेसेज टि करिछन्ती नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम रु परिपरि आम सहित कनेक्ट होइछन्ती स्वर्णलता राउत संतपुरा केन्द्रापड़ लिखिछन्ते नमस्कार एंड जय जगन्नाथ सुबी मैम आपण अंकरिंग करिथिबा डायलिन प्रोग्राम बेस शिक्षणीय एंड हार्ट टचिंग थैंक यू सो मच मैम आज इवनिंग रे हम संध्या आसर जमिला निहाती आपण मानकर प्रेजेंस जेतेबेले रहिछे आपण मानकर एसएमएस जेतेबेले रहिछि सो संध्या आसर निहाती भाबरे जम्बो एंड लिखिछन्ति गुड इवनिंग आपणको नाम फिजिक्स सर सोमनाथ साहू सर को सो निहाती भाबरे आपणको मेसेज पहुंची जाइथिबो एंड आउ किछि खास खास म्यूजिक पहुंची दोछि आजर संध्या आसर को आउरी जमेबा पाई

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदाग स्टूडियो घड़ी रे टाइम वर्तमान रात 8:02 सारी छे एंड रेनबो घड़ी रे समय हे जे छे आरंभ करबा शो गीतरे मितरे फ्रेंड्स आम लाइफ को कलरफुल करिबा पाई एवं दैनंदिन कामरु टिके ब्रेक नबा पाई आम लाइफ रे आसी थाए किछि फेस्टिवल माने पर्व पर्वाणी फ्रेंड्स जेमिति आमे पालन करू होली दिवाली एवं सरस्वती पूजा गणेश पूजा एमिति अनेक पर्व जेमिति एबे चली छि आम कालियार पर्व सुनावेश फ्रेंड्स एमती विश्वरे बहुत अजब गजब पर्व पर्वाणी रही जहासिना आमको शुणिले अजब लगे किंतु सेमाने माने आमर पड़ोसी देशर भाई बंधु माने एहाको बेस एंजॉय करिथांदे सो फ्रेंड्स एही पर्व किछि विषयरे आपणक सहित त ढेर सारा इन्फॉर्मेशन पास करबे किंतु जेतेबेले गीतरे मितरे चलिछि सो गीतरे केमिति न चलिबो तो आपणक पखरे पहुंचि दोछि केकिंग आवाज रे बहुत ही खास गीत सो आई विल बी राइट बैक इन सम मोमेंट्स एंड तापरे आपणक सहित ढेर सारा कथा हेबी सो कुआडे भी स्विच करंतुनी कुआडे भी जानतुनी केवल आउ केवल सुनथांतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आउ कहुथांतु दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो चली छी गीता रे मेता रे एंड लेट्स ड्राइव टू थाईलैंड। हाँ फ्रेंड्स, समस्तंकर ड्रीम डेस्टिनेशन रे आर्ड हेताय थाईलैंड। तो थाईलैंड रे इमती गोटे फेस्टिवल अछि जहा सुनिके आपनको बहुत ही अजीब लागबो। सेठी हेताय मंकी बुफे फेस्टिवल। सो फ्रेंड्स, ए फेस्टिवल रो मुख्य अतिथि पालटंती मणिष नुहे बरं माकड़ माने। सो से विभिन्न प्रकार फल एवं खाइबा सजेक दिया जाए जोटा कि पर्यटक मान बेस आकृष्ट करें देख आनंद नहीं था। एंड फेस्टिवल नेचर एवं पशुपक्षी मान प्रति सम्मान वार्ता दे थाए। सेहिपरि जापान रे रहिछि हडाका मसूरी। ई फेस्टिवल रे हजार हजार पुरुष गोटे प्रकार ट्रेडिशनल पोशाक पिंधि भाग्यर प्रतीक थिबा वस्तु पई दौड़ते। एटा को साहस श्रृंखला एवं सामूहिक भावनार प्रतीक रूपे से माने पालन करिथांती।

सो फ्रेंड्स म्यूजिक सिलसिला तो जारी रहिबो बट ता पूर्वर कहि रखे ताइवान रो स्काय लैंटर्न फेस्टिवल जदि आपन को केबे ताइवान जबार चांस मिले तो निहाती थरी देखंतु ए फेस्टिवल ले हजार हजार लंठन को आकाश को उड़ा जाय थाय आ प्रत्येक लंठन रे लेखा थाय किछि होप किछि ड्रीम आ किछि प्रेयर सो एमती ही बहुत किछि अजब गजब फेस्टिवल आवरी भी रहै छी बट टाइम आउ ई टाइम टू ही बड़ा फेस्टिवल किछि नाही कारण सेही टाइम साथी रही हमकू चालिबा को पड़िबो एंड ईठी ही एंड करू छी सो गीतरे मितरे को स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक से दिल तक।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9 ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद

0: विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षा

0: पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह

का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Welcome back, friends. After this news break, tune kare chalte musically yours 100.4 Akash Bani FM Rainbow Katak Dil Se Dil Tak. स्टुडियो घड़ी समय वर्तमान राति 9:15 27 seconds आपण मानक सहित मुझे आपण होस्ट एंड दोस्त सुवी विद शो अभुला स्मृति. सो फ्रेंड्स, जेतेबेळे रातिरे आसी जानती जह्न तारा एवं रातिर रंग धीरे धीरे कमळार नील आड़क आसी जाए, सेतेबेळे मनर कानभास रे आंके

हवा के झोंके के साथ वो गिद आते हैं, भुले हुए लम्हे फिर से याद दिलाते हैं। पूर्वी सूरों की कसक कुछ ऐसी है जो दिल को छूकर चुपचाप निकल जाते हैं। सुप्रीम सबल स्मृति चलिए सो एंड सुभी अच्छे आपणक सहित सुनिश्चित सहित स्मैचारी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुफ्रेंस जारी रखा से कि पुराणा याद रिलसिला कि मेमोरी रिफ्रेश करवा सब लिजेडरी म्यूजिक।

basically yours 100.4 Akas Bani FM Rainbow Katak Dil Se Dil Tak. Abang se tam mujhe apna radio sathi dost and host Subhi and so chali chi Obula Smriti re apanga pakhare pahunchu chi legendary singer Kishore Kumar ebang Odia कथा चित्र र नायकार अक्षय कुमार महांतिंको कंठरो केतटी पुरुणा दिनर स्मृति अभिला स्मृति रे वारंट कथा चित्र रो किशोर कुमार का आवाज रे परवर्ती केतटी आपणक पाखरे

म्यूजिकली योर्स 100.4 एकस बने एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आपणक सहित मुझे आपणक म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी एंड स्टूडियो घड़ी टाइम वर्तमान राति 10:00 बजी 2 मिनिट ही सारी एंड रेनबो घड़ी स्टार्ट ही सारी दिल से दिल तक कनेक्ट हबार शो रेनबो एसएमएस आपणक मनपसंद गीत शुणीदेवी मुझे कारण आपर सारा रिक्वेस्ट अलरेडी आसे मो पाखे पहुंची सारी सो आउ नवानी टाइम कथार आपणकर गीत गुड़िक पहुंचेदे आपण सो गीत रिक्वेस्ट कर दिल्ली रु चिकू गुनु सोनू सोम एवं देबू शेष श्रावण कथचित्र शुणवाक चाहते गीतटी और परम सहित जोड़ी रोहित मेहर बुढ़ापाली विजयपुर बरगड़ लिखिंट शुभरत्री मैम जय जगन्नाथ और सोनू निगम का आवाज गोटे ओडिया भजन शुणवाक चाहते निहाती भाव में पहुंचदेवी आपण शुभ इवनिंग एंड जय जगन्नाथ तो पर गीतटी रिक्वेस्ट कर जाजपुर बैतरणी रोड रु सुरेन्द्र पात्र कथचित्र एक रिश्ता शुणा को चाहते गीतटी सो ये तीनो गीत बैक टू बैक आपण पहुंचे स्टेट्यून 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

पाली और देवेन जी शुणा को चाहते कुछ कुछ होता है कथा चित्र रु गोटे गीत परिपरि रिक्वेस्ट कर नरगोड़ा छत्तीसगढ़ रु महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी शुणा को चाहते तीन देवियां कथा चित्र रु गीत टी पर मेसेज कर राजेन्द्र नना शुणा को चाहते दुखी मनीषर इज्जत के भजन टी सब पहुंचे तीनो गीत बैक टू बैक आप स्टे ट्यून टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का दिल से दिल तक।

सो चलिछि रेनबो एसएमएस रे आपमने ट्यून करिछन्ते आपनकर फेवरेट म्युजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक बंग परे परे गीतटी शुणवाक चाहती तेकराम पटेल मंजू पटेल तमनार छत्तीसगढ़ रु शुणवाक चाहती कुली नंबर वन कथचित्र गोटे गीत और पर हापी न्यू इयर कथचित्र मनवा लगे गीतटी शुणवाक चाहती किशोर पाणी खारवेल नगर भुवनेश्वर एवं धड़कन कथचित्र टाइटल सॉन्ग शुणवाक चाहती उपेन्द्र कुमार गुप्ता हिमांशी गुप्ता और बीना गुप्ता सुंदरगढ़ रु यही तीनोटी गीत ही पहुंचे आपण पाखे सो स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्त से की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना।
1: देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं।

0: वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं, भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ।
1: अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी।
0: तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी।

0: সো ফ্রেন্ডস, আজ তো সময় ইশারা দিয়েছি এইটি হি রিনবো এসএমএস এবং আজর সমস্ত শো কু এন্ড করিবাকু পড়িব। বাট আজি যে মানে আমার সহিত জড়ি হইছন্তি সমস্তঙ্কু ঢের সারা প্যার এবং যে মানে আজি আমার সহিত জড়ি হই পারি নাহান্তি, আই হোপ নেক্সট টাইম আমি আপনঙ্কর শো কু আপনঙ্কর এসএমএস কু স্থান দেবাকু নিহাতি ভাবরে ট্রাই করিব। বর্তমান শুনন্তু হিন্দীরে সম্বাদ রিলে করে প্রচার করুছু আকাশবাণী দিল্লিরু।
1: শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কো আপনা ইস্তিফা সৌঁপ দিয়া। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी

0: मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 11:05 ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସହ ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାଝି। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସୁନାବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର 136ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ, ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର। ହରାରେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେକୁ 90 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ସରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ 2024 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ। ରୋମାନିଆକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଜୁନିୟର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।

10 question the 100.4 Akash Bani FM Rainbow Katak Dil Se Dil Tak. अधिवेशन शेष करने पूर्व आसन

0: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनजुनी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को आरंभ करिबा। सकाळ आसीछि अनेक आशा को नहीं, सकाळ आसीछि अनेक विश्वास को नहीं। ई कोळ सकाळ रे असंत प्रभु को पाद पद्म रे समर्पित बा भक्तिर पुष्पांजलि भावर स्वरांजलि अर्घ्य थाली।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यम प्राय 60 कोटी लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंते योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत 12 कोटी रु ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जायछि जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु
1: हे प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी
2: अरे राजू भाई पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरे एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलर लगाई देलिनी बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति
1: सतरे भाई
2: हां भाई मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं
3: आज्ञा हां आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800 34 5 718 रे जोगाजोग करंतु

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: से जगतर नाथ जगन्नाथ लीलामय ठाकुर केते नाट तार केते लीला तार नौ दिन देख जाइथिले रत्नवेदी को जन्मवेदी को रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी को जाइथिले से श्रीगुंडीचा जातरे आउ फेरिला वाटरे से मौसी घर पोड़पिठा भी खाइबे। श्री विग्रह मानकर ए फेरंता रथ यात्रा को बाहुड़ा यात्रा बा दक्षिणाभिमुखी यात्रा कह जाए। श्रीगुंडीचा यात्रा रे सेमाने उत्तराभिमुखी जाइथिले आउ फेरिबे दक्षिण अभिमुखी। उभय उत्तर अभिमुखी आउ दक्षिण अभिमुखी उभय रे महाप्रभु को रथ ऊपर दर्शन करे पुण्य मिलिथाय बोली विश्वास रहिछि। श्रीगुंडीचा यात्रा रो नवम दिन रे चतुर्था मूर्ति को आड़प मंडप छाड़ी रत्न सिंहासन अभिमुखी यात्रा आरंभ हेबो। पहंडी विजयरे देवता मानको रथरे अधिष्ठित कराजिबो। बाहुड़ा यात्रा रो दक्षिणाभिमुखी यात्रा करथवा बेले ठाकुर मानको दर्शन कले गुंडीचा यात्रा रो दर्शन भली से उत्तराभिमुखी दर्शन भली फल मिलिथाय बोली पुराण रे वर्णना रहिछि।

0: प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 18003456718 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: ओडिशा सरकारक समयबाय विभाग तरफ रो राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चिनाबादाम हळदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाक पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
2: श्रीक्षेत्रे मानवीय लीला करुछन्ति महाप्रभु जगन्नाथ। देवता हेले भी मनीष भली चलनी पुणी मनीष भली खाद्यपेय भोग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्री गुंडीचा भली समस्त नीति नियम शेष परे छेरा पहरा आउ तापरे रथ दौड़ी लगी रथटणा आरंभ हुए। बाहुरा यात्रा रे मध्य श्री बलभद्र आउ देवी सुभद्रांक रथ प्रथमे टणा हुई सिंहद्वार लगे आउ जगन्नाथ महाप्रभुक रथ मरीचकट निकट रे श्रीनगर ठारे पहुंचिबा परे लक्ष्मी नारायण भेट होइथाय। अभिमानिनी लक्ष्मी मां चाहणी मंडप को आसी महाप्रभु को चाहणी करिथांती आउ तापरे नंदीघोष रथरे विराजमान करथुवा जगन्नाथक सहित तांकर भेट हुए। रथ प्रदीक्षण आउ महाप्रभुक आज्ञामल पाई लक्ष्मी ठाकुरानी श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करिबा संगे संगे श्रीनगर ठारु नंदीघोष रथ टणा जाई सिंहद्वाररे पहुंचिथाए। एभली तीनि रथ बाहुड़ा यात्रारे जाई सिंहद्वार सम्मुखरे विजय करिथांती।

0: के ग्लासगो की फिजाओं में भी इंडिया इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का।
1: इंडिया Olympic javelin champion Neeraj Chopra is the big attraction. He won gold at the 2018 Commonwealth Games. Boxer Lovrina Borgain is back as well and brings in the baton. Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
2: 123 खिलाड़ी 10 अलग अलग खेलों में टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं उम्मीदें और शुभकामनाएं।
0: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी। नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी लेकिन उम्मीद एक होगी।
2: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं।
0: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे। खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना।
2: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है। 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहाँ 19 खेल थे तो वहीं इस बार सिर्फ 10 हैं। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वाश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है।
0: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी।
3: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन है हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा।
2: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है।
4: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड। एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है वो तो अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 months इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू ऑल टीम विल बी देयर।
2: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है।
0: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा।
2: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंगम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
0: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है, 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
5: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green and this Glasgow is

0: Indo-Patrick. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
1: उसका असर देखने को मिला विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है
2: दोनों टीमों ने एक-एक सेट जीता जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में चार वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने यह दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है
3: नहीं मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी
2: हालांकि जैवलिन थ्रो में कंपटीशन भी उतना ही तीव्र है नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था
1: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्रीशंकर बर्मिंघम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था लेकिन मुरली श्रीशंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है
2: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं
1: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंघम में इन्होंने जिताया था
2: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर प्रवीण चित्रवेल जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी जिसके बाद एशियन गेम्स एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर
1: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी
2: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर और 5,000 मीटर वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं अपनी दावेदारी पेश करेंगे
1: अब बात प्रियंका गोस्वामी की पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था
2: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी
1: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे
2: ये तो बात रही एथलेटिक्स की अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का
1: मिडिल वे वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें

0: जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
1: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
0: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
1: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
1: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
0: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
0: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
0: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन किलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
3: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ।
4: स्कॉटलैंड रो ग्लास्को ठारे अनुष्ठित कॉमनवेल्थ गेम्स राज्यगोष्ठी क्रीडार डेली हाइलाइट रिले कर प्रचार करलो आकाशवाणी दिल्ली।

सियासत की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: प्रतिष्ठा होता पवित्र वैशाख से आषाढ़ मास जो दशमी तिथि आज विजय उत्सव प्रत्यावर्तन कर प्रभु जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरी से मांगर कोलरु फेरी जीवे कर्म भूमि को सुंदर भाव रे समग्र विश्व को समग्र प्राणी मान कहीदे से मानवीय लीलार विस्तृत भाव रे जोठी जन्म अच्छी से मार प्रेम मार स्नेह रहिबा सहित आमे कर्म मध्य करी जीवा आ कर्म आ जन्म आ धर्म ये होची तीनी गोटी कथा जहाँकि आमे ताकु मानवीय यात्रा बा जो लीला यात्रा घोष यात्रा रथ यात्रा माध्यम रे प्रभु निजे समग्र विश्व को वार्ता प्रदान करुछन्ते अखिल ब्रह्मांड ठाकुरंकर ए नीति रे आज आमे देखि पारुछु सुंदर भाव रे रथ गुड़िक सुसज्जित होइछन्ति से सरधा बाली रे सरधा बाली को जहाँ रे सजनी सरधा बाली को जहाँ तीन रथे तीन ध्वजा उड़ू अछि केमंत सदिरे आहा जो सुंदर भाव रे रथ आसीथिले सिंह द्वार रु एट गुंडीचा मंदिर रे सिंह द्वार रे रहीथिले किंतु रथ दक्षिण मोड़ होई आज नाकचणा द्वार रे अपेक्षा करिछन्ति जो नाकचणा द्वार दे जाइथिले प्रभु सिंह द्वार दे प्रत्यावर्तन करिवे नाकचणा द्वार दे से नाकचणा द्वार अति सुंदर भाव रे सजा जाइछि पुष्पर नाना सुशोभित रंग बेरंगर पुष्परे आउ सेठी मध्य बहु प्रशासनिक स्तर रे आउ बहु व्यक्ति अपेक्षा करिछन्ति निर्देश मात्रे प्रभुंकर लीला कार्य किपरि भाव रे अनुष्ठित हेब आउ मंदिर भितरे गुंडीचा मंदिर रे जो प्रातःकालीन जो समस्त नीति नियम रहिछि मंगल आळती मध्य शेष होइ सारिलाणि वर्तमान अवकाश पूजा चलीछि जहाँ आम श्रीमंदिर प्रशासन तरफ रु किछि समय पूर्व जो सूचना प्रदान करा जाउथिला डाकबाजी यंत्र द्वारा ताकु आमे श्रवण करि जानि परिलु जे वर्तमान अवकाश जो नीति चलीछि अवकाश कहिले प्रभुंकर स्नान प्रभुंकर दंत मर्जन ए सबु नीति चलीछि तेबे प्रभुंकर ए नीतिकांति एहिपरि भावरे चलिथिबो आगकु निर्दिष्ट नीति नियमरे कारण से त होचति स्वतंत्र कालिया ठाकुरंकर स्वतंत्र नीति स्वतंत्र नियम से नीति नियमरे आमे मध्य आगे जीवु एवं आपण मानंकु ए सरथा बालीर सुंदर जो दृश्य आमे अवलोकन करुछु आपण मानंक पाखरे पहुँचेई पारिबु तेबे आपण आसंतु आमे नै जीवा गोटिए छोटिया विरति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: पुरीर बड़दाण्ड केवल गोटे रास्ता नुहे
2: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ
1: एही पथ रे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
2: अछि केवल मनीष पणिया
1: आउ जते बेले कहा पाई साहाज्य रो हाथ बढे
2: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण
1: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना
2: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाने रे 7 दिन जाय 1.5 लाख टंका पर्यंत रो चिकित्सा खर्च सरकार बहन करंती
1: ओडिसा रो 798 घर डाक्तरखाना एही योजना रे पंजीकृत होईछंती
2: सेही भली समस्त सरकारी डाक्तरखाने रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा
1: आसंतु मानवीयता रो एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढाईबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता राहत
2: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा
1: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी
3: हां ये मुतिटी भलो लागुची पत्नी को पसंद आसीबो
4: हां सर आपन को चॉइस बहुत भलो अछि आउ डिजाइन भी नुवा
3: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सोनार विशुद्धता रा प्रमाण कउठि मिलिबो
4: सचेतन ग्राहक हुअंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सोना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
5: विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र रथयात्रा उपलक्षे लक्ष लक्ष श्रद्धालुंक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा निमन्ते सजग रहिछन्ति स्वास्थ्य विभाग जदि कोनोसे भक्त हठात असुस्थ होंति किंबा जरूरी चिकित्सार आवश्यकता हुए तेबे निकटस्थ मेडिकल पोस्ट स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्वास्थ्य कर्मी पुलिस किंबा स्वेच्छासेवीकु तुरंत सूचना दियंतु रथयात्रा समय रे पुरी एवं आखपाख अंचलर प्रमुख स्थान जथा
6: गांडुआ चौरा छक
5: सिंहद्वार रथ निकटरे टाउन थाना दिगबारिणी खुंटी स्वर्गद्वार लाइट हाउस पुलिस हॉस्पिटल टीबी एवं आईडीएच गुंडीचा मंदिर मालती पाटपुर बस स्टैंड चंदनपुर सीएचसी साखी गोपाल सीएचसी सातसंख सीएचसी पिपिली सीएचसी बालीघाई छक कोणार्क पीएचसी

अस्मि नित्यम श्रोता बंधु महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर दिव्य श्रीक्षेत्र धाम रे जो परम पावन धाम आज लीला लगी बाहुड़ा जात्रार लीला आपण माने श्रवण करुथिले आमर बरेण्य घोषक मानंक पाखरु क्षेत्रर महिमा सहित श्रीक्षेत्रर परिवेश सहित आपण मानकु से माने जोडुथिले तेबे आमर एई बळगंडी छक निकटरे जो परिवेश बड़दाण्डर रहिछि आपण माने अभिभूत हेबे से परिवेश सहित मिसिले प्रथमरे एई क्षेत्रर एई स्थानर जो विशेषता रहिछि जे कि भक्त सालबेग जे महाप्रभु को आकुल प्रार्थना करि कहिथिले आहे नील शैल प्रबल मत्त बारण मो आरत नलिनी बनकुकल दल से महाप्रभु को जो प्रार्थना करिथिले आकुल निवेदन महाप्रभुंकर दिव्य नंदीघोष अटकी जाइथिला से कथा एई आमर केन्द्र आगरे भक्त सालबेगंकर समाधि पीठ बड़दाण्डरे एभरी भक्त टीए सीए तांकर समाधि पीठ अवस्थित बड़ छता जो बलगंडीर आम सम्मुख भागरे छता मठ बलगंडी छता मठ ताहा गोटे धार्मिक अनुष्ठान टीए विराजमान करुछि एवं आम केन्द्र सम्मुख भागरे अनेक हजार हजार संख्या रे श्रद्धालु माने गोटे बर्णर मुंडरे सबू टोपी।

0: नृसिंह दश अवतार भितर चतुर्थ अवतार हूँ नृसिंह अवतार जो नृसिंह को आदि नृसिंह भाव देखु आउ जड़े नृसिंह अच्छा वर्तमान जो शहे हाथ उच्चर देउल जो रही वर्तमान देउल दक्षिण पटरे जो मुक्त मंडप को लागिकी जो नृसिंह अच्छा से होती विदारण नृसिंह आदि नृसिंह तेनाली नृसिंह हूँ मूल सत्य युगर जो नृसिंह कथ कहला से अनुसार यही क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कह जाए यही कथार परवर्त धारा बरणी प्रदान करने मु प्रताप त्रिपाठी को नवेदन करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: पदात पदात श्रेष्ठतम क्रमात परम पावन सिंधु तेरे तुजो ब्रह्मन राजते नील पर्वत से नील पर्वत रे नील कंदर रे महाप्रभुंकर दिव्य लीला सबुबले श्रद्धालु भक्त टीए वर्ष तमाम देखुवा बेले जो अवकाश मिली नवदिनात्मक यात्रा श्री गुंडीचा यात्रा से स्वतंत्र भाव देखापी तार ठाकुर को से धाई आसी कहीं से जाणी ये हूँ गोटे अवकाश जहाँ दुर्लभ आपण मैने श्रवण कर नीलकंदर दर्शन आड़प मंडल पर दर्शन केते पुण्य प्रद आते स्वतंत्र रही आड़प मंडप दर्शन फल बा महाप्रभुंकर आशीर्वाद तेबे श्रोता बंधु ये हूँ महाप्रभुंकर बाहुड़ा जात्रार वर्तमान परिवेश जहाँ रही सूर्यदेवंकर टिके टिके आगमन मंद मंद पवन प्रवाहित आउ मेघर मुक्त आकाश वर्तमान तेणु समस्ते विचरण करुछंती आनंद उल्लास रे सत जेपरी तांकर मनर ठाकुर मनुआ ठाकुर आउ किछि समयर जो अपेक्षा परे से माने से घंट घंटार निनाद श्रवण करिवे आउ निजकु धन्य करिवे कहिबाकु गले नवधा भक्तिर स्रोत वर्तमान प्रवाहित होउछि श्रीक्षेत्र रे एई बड़दांड रे आउ से स्रोत रे अवगाहन करुछंती समस्त श्रद्धालु भक्त माने आपण माने जानंती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्म निवेदनम कौन बा अभाव अच्छी एठी श्रवण करुछंती महाप्रभुंकर कथा को वंदना करुछंती महाप्रभु को अर्चना करुछंती सेवायत माने 119 प्रकार सेवा विशेष करी गोष्ठीगत सेवा एही उत्सव रे एही स्वयं लीला रे श्रीगुंडीचा यात्रा रे अर्पण करा जाए गोटे किसी कम रही नाई सेवा तेणु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आ समस्ते चिंता करुछंती से जनार्दन प्रभु तुम श्रीमुख केते बेले आमे देखिबु एही प्रकार कहिबाकु गले ए नवधा भक्तिर जो पवित्र जल रे पवित्र अवगाहन करुछंती श्रद्धालु भक्त माने मनरे उल्लास उद्दीपना आमे स्पष्ट भाव रे पारि पारुछु मनर अवस्था को श्रद्धालु भक्त माने केउ माने कहुछंती आमे श्रीमंदिर को टिके वर्तमान रही थिबो स्वतंत्रता थिबो वर्तमान दर्शन करिवा पाई तेणु श्रीमंदिर को चली जिबा प्रथम रे आउ केही केही भाबुछंती आमे आड़प मंडप आड़ को जिबा आमे जागा टिके ठीक भाव रे पाई गले आमे महाप्रभुंकर पहंडी दर्शन करिवा रथ टलारे मध्ये भाग नेबा एही प्रकार मनर कथा को किए बुझिबो तेणु धीरे धीरे सहस्र संख्या रे आम केन्द्र आगरे श्रद्धालु मानंकर जो समागम सेथिरे आमे महाप्रभुंकर दिव्य लीला को बारी पारुछु प्रभु केते महिमा मय ठाकुर आपण प्रकृतरे आपण मनीष पर यदि लीलार करिन थांते मनीष माने एते आग्रह करिन थांते खोला बड़दांड रे ठिया होई खरा वर्षा को समस्त प्रकार शीत काकर को कष्ट को सहिबारे ए भक्त केवल आपण को दर्शन को गुरुत्व देउछि वर्तमान आम केन्द्र आगरे अनेक जो स्वेच्छासेवी दल माने से माने तांकर स्वतंत्र भाव जाउछंती श्रृंखला रक्षा करिबा पई भक्त मानन को सेवा जोगई देबा पई 380 प्रकार जो सेवा संस्था माने स्वेच्छासेवी संगठन माने ये बड़ यात्रा को आधाई आसी सेवा जोगाइबा पई सी महाप्रभुंकर महिमा समस्तंग उपरे काहेकि की न होइबो तेणु ये जो कुआ जाए आमर गोटे कथा शुणा को भजन आम पाइ थका।

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुह बर हूँ लक्ष लक्ष श्रद्धालु आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यह पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक मैंने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय आमकू दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवा पड़ो जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करतु बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य कृत्रिम रंग दिया खाद्य बासी और दुर्गंध होता खाद्य माछी बसुवा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खातु ना खाद्य खावा पूर्व एवं पर तथा शौच हवा पर निज हाथ को साबुन ने भल भाव दिखा शरीर जल शुष्कतार रक्षा पाइबाई आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पिंत सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रुहतु अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणेतेणे न पक डस्टबिन व्यवहार कर जरूरकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
2: जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अति आनंदर कथा आमे वर्तमान देखी पारुचु गोटिए सरथावाले रे गोटिए भक्त निजको

0: विनम्र सेवा जारी रही वर्ष जात्री मान सुविधा पाई ओडिशार विभिन्न प्रांतर और पड़ोसी राज्य विशेष ट्रेन चलाचल घोषणा कर अतिरिक्त टिकेट विक्रय केन्द्र जात्री सहायता केन्द्र और स्टेशन मानक जात्री मान सुरक्षा पाई विशेष व्यवस्था कर पूर्वतट रेलपथ आपण सेवे
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान आम देखुचु नाकचणा द्वार सम्मुख भागरे लोकारण्य अर्थात वर्तमान घंटुआ माने सेठी पहुँची गले नृत्यकारी माने सेठी पहुँची गले एवं आम जाणीपारुचु या परे होउचंती पहंडी हेबे सेई बलभद्र भगवान दुर्भ्याम शोभित लांगलम समुसलं कादंबरी चंचलं रत्नाढ्यं बरकुंडलं भुजबळै राक्रांत भूमंडलं वज्राभा मळचारु गंड जुगलं नागेन्द्र चूड़ोज्वलं संग्रामे चपलं शशांक धवलं श्रीकामपालं भजे। आजि कामपाल विजय करिवे आउ अल्प समय परे आमे देखिबा कामपाल विजय करिवे यही जो घंटुआ माने वर्तमान घंट बजाऊ से माने श्री सुदर्शन भगवान को दर्पदलन रथरे आज छाड़ी जाइछंती यही सुदर्शन होउछंती समग्र विघ्नर उच्चारण करने से आसीछंती जेहेतु प्रभु माने विजय करिवे चक्र विराजे दक्ष करे सूर्य की उदित अंबरे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दक्ष कर बा डाहाण करे भगवान सुदर्शन विजय करिथांती एवं सी होती सूर्य कोटि समप्रभ से कहा जाए सूर्य की उदित अंबरे सत्य कौन अंबर अर्थात नभोदय नभोमंडल सूर्य उदय हेले कि यही भाव विजय कले से श्री सुदर्शन महाराज घंट घंट घंट घंटा धीरे धीरे शुभिलानी एवं आमे मध्य जो फांकरे आमे देखुथिले जे वर्तमान विजय करुथिले सुदर्शन महाराज से ही फांक दे वर्तमान आम देखुचे धीर पदक्षेपरे पहाउंड परे पहाउंड पकई विजय करुछंती कामपाल हलायुध संकर्षण भगवान श्री बलभद्र भगवान सी होती कामपाल ताकर गोटे नाम होची कामपाल श्री कामपाल भजे। कामपाल कहले कौन काम कहले कंदर्प पाल कहले रक्षा पालक कंदर्प कंदर्पर ज्वाळारु जे रक्षा करती सी होती कामपाल अर्थात शिव स्वरूप भगवान शंकर कंदर्प को ध्वंस करते जेहेतु श्री बलभद्र भगवान होती शिवंकर स्वरूप तेणु तांकु कामपाल कहा जाए। काम कहले कंदर्प पाल कहले पालक कंदर्प ज्वाळारु जे मनुष्य को रक्षा करे सी होती कामपाल से ही कामपाल से विजय करिवे से किए से अयंगि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद वलं विदुः जदुना मपृथक भावात् संकर्षण मृत श्रुते। तेणु कहिबार कथा हला अयंगि रोहिणी पुत्र ये होचंती रोहिणीकर पुत्र जतेबेले भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म आरंभ हब शेषरे ता पूर्वरु संकर्षण भगवान देवकीक गर्भ को पशी पलै आसिले एवं देवकीक गर्भ को आसिकरी जतेबेले से देखिले भगवान देखिले जे वर्तमान जदि मो पूर्वरु संकर्षण चली जिबे अर्थात हलायुध चली जिबे से तेणु एवं कंस को विनाश करिबे मु पुणी केमिति जिबि सेति पई से कौन कले मा जोगमायांक माध्यम रे देवकीक गर्भरु से ही गर्भ को कर्षण करि नेकिरी रोहिणीक गर्भ रे रखिले एवं रोहिणीक ठारु से जन्म ग्रहण कले यति पई तांकु रोहिणी पुत्र बिलिकिरी कहा जाय। तेणु अयं हि रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो बुधै गुणैहि ये यते गुणवान तांकर गुण अवर्णनीय एवं सी होती बलाधिक्यात बलंग विदुह ताकू ताक।

0: निर्माण करिछु एवं दारू रूप तांकु देइछु से दारू रूप टी तांकर निज इच्छा रे से ग्रहण करिछंती निज इच्छा रे काही के ग्रहण करिछंती ना दारू रूप हवा द्वारा से आमो पाई सुलभ हेले दारू रूप हवा द्वारा तांकर यात्रा हेई पारिला दारू रूप हवा द्वारा से बड़ दांड को आसी पारिले भक्त मानंकु से दर्शन देई पारिले एवं दारू रूप हवा द्वारा तांकु मानुषी लीला करबा को सहज हला तणु अनेक गुडे विचार अनेक गुडिये तत्व समाहित करबा पई ताको समन्वित करबा पई केवल दारू विग्रह ही एकमात्र बाट तेणु महाप्रभु निज इच्छा रे एई दार बतनु धारण करी वर्तमान जगत को उद्धार करबा पई आसचंदे स्वयं परमात्मा परम ब्रह्मंकर जो लक्षण सब वेद वेदांत रे कहायछि से समस्त लक्षण महाप्रभु को विग्रह रे आमे देखुछु महाप्रभु आसंतु जेतेबेले बनाटी बुलिलाणी एवं टाहिया दिसिलाणी महाप्रभु आउ कि समय पर आसिबे तेणु महाप्रभु जेतेबेले रथ परिक्रमा करिवे परिक्रमा तो करिवे नाही तांको रथ को जेतेबेले तांकर आमर सामना पटरे जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान अछि सेही बाटो देके से तळे तांको नंदीघोष रथ को जिवे सेतेबेले महाप्रभु को महिमा एवं तत्व आमे अवश्य आपनकु कहिबु वर्तमान आमर देखा जाउछि जे समग्र बड़दाण्ड माने जेतिकि बाट आमे देखि पारुछु सरधा बालुरु आरंभ करी आमर द्वितीय केन्द्र थिबा बड़गंडी पर्यंत प्राय आमको देखा जाउछि एवं से जो देखा जाउछि आमे केवल मुंडमाळ देखु जाउ किछि देखा जाउ आमको सकाळे सकाळे सरधा बाली देखा जाउथला किछि किछि रास्ता आमे देखि पारुथुलु किंतु वर्तमान जेते मुंड नहीकरी एपट सेपट चाहिले मध्य केवल मुंडमाळ छड़ा आमको आउ किछि दृश्यमान हो नाही तेणु एथरो भावंतु आपण वर्तमान बड़दाण्डर अवस्था कौन एवं ए सबुबेले हुए जेतेबेले गजपति महाराजा छेरा पहरा करिवा पई आसिबे एवं से समय मध्य उपगत हेलाणी एवं मेहना मध्य बड़गंडी पाखरे बड़शंख पाखरे मेहना मध्य वर्तमान उपस्थित हेलेणी एवं अपेक्षा रहिछि सेथिपई तेणु एई जो समय एई समयटा को सबु भक्त माने श्रद्धालु माने अपेक्षा करिछंती तेणु सेथिपई ए मुंडमाळ माने आमे देखि पारुछु आउ शून्य स्थान बोली किछि नाही बड़शंख पर्यंत श्रद्धा बालिरु परवर्ती धारा बिवरणी दबा पई मु डॉक्टर नरेश चंद्र दास महाशय को अनुरोध करुछि महाप्रभु को महाप्रभु श्री जगन्नाथ वर्तमान गुमुट भितरे नाकचणा द्वार भितर को भी आसी नाहंती तार किछि पछरे ताहिया हलिवार देखा जाउछि पहंडी वर्तमान तारी भितरे चालीछि एतिकि सूचना आमे श्रोता मानकु देइ परिबा परवर्ती बिवरणी आपण दियंतु जेतेबेले नाकचणा द्वार रे महाप्रभु आमर दृश्यमान हेबे सेतेबेले परवर्ती कथा आमे तथ्य दबा
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ वर्तमान गोटे घड़ी सन्धि मुहूर्त आम पहुँचे जे तीन रथर दुई रथरे रथी माने बसीगले आउ गोटे रथ वर्तमान रथी को अपेक्षा करी रही आम आशा करुचु जे आउ किछि समय मध्य महाप्रभु आसीबे वर्तमान आउ घंट शब्द शुभुनि कि वर्तमान समस्ते जेमती शांत होकर रही जाइछंती कौन पे रही जेमती बात्या पूर्वरु बा कौन सी एक झड़ पूर्वरु टिके शांत पड़ी जाए से भली प्रभु सेमती आसीबे प्रभु जेतेबेले आसीब समस्तंकर दृष्टि सेठिकी चाहिकरी बसिछंती काहेकि ना जगत करता चौवर्गदाता फिटाई ऐश्वर्य खणिकी प्रेम चिंतामणि संपत्ति को आनी दांडरे देवे कि बुणिकी से वर्तमान प्रेम चिंतामणि रे दांडरे आनी बुणिमे तेणु वर्तमान से भितरे अछंती एवं भितरे गोटे कार्य चालीची काहेकि ना वर्तमान महाप्रभु गोटे वर्षर अवधि पूर्ण होला परे आसीथिले आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे एही माँ पाखकु जन्मस्थान को एवं जन्मस्थान रे केते दुखी रंकी पतित समस्त को उद्धार करिछंती जेतेबेले महाप्रभु विदा होउछंती ना तेणु के सात दिन हला स्नेह लगेथिले स्नेह लगेकिर जेतेबेले महाप्रभु विदा हवा को बसिछंती तेणु सेतेबेले जेमिति आज श्रीमंदिर रे गुमुरी गुमुरी कांदुछंती श्रीदेवी महालक्ष्मी ठाकुराणी एवं से अपेक्षा करिथिले से मध्य स्थान को पळे आस्तिले काहेकि ना से ये स्थान को देखिबा पई ये एमिति एक स्थान ये स्थान रे केते जे आकर्षण ये स्थान रे आकर्षण रे महालक्ष्मी आस्तिले एवं एही स्थान रे आकर्षण रे इठी राई राई तोटा बिली गोटे अछि ତାକୁ ଆଇତଟା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ।

0: टेक दबापाई कहाँ पाखे शक्ति नहीं सही प्रार्थना प्रभु मणिमा कहीं आपण मन दुख कले कहीं अभिमान कर प्रभु हाँ आपण को टाहिया नहीं बोली कौन जीवे नहीं बोल भावुंत छोट पिला
1: स्वयं जगत तेणु स्वयं जगत को धारण करने आम पाखे कि आधार अच्छी
0: से निजे आधार
1: यही
0: जो तीन टा रथ से कहते स्वयं श्वास न विग्रह तेणु तस्मात जानंग न विद्यते पूरा परिष्कार क्या जान बोली आम कह
1: कहीं
0: ये हूँ स्वयं महाप्रभु नहले महाप्रभु को धारण करने कहारी क्षमता ना जे विश्व को धारण कर रथ ताक धारण करदेव तेणु आम एकाधार रथ देखुचे रथ ये होंगे रथ आमर शास्त्र कहते रथ कहे मु देवता पथ कहे मु देवता या अर्थ कौन देखु परम ब्रह्म आउ गोटे स्वरूप हूँ बृहत्वात् बृंगणत्वाच तद ब्रह्म परम विदुह कौन या अर्थ जे निजे बृहत है अन्य को बृहत कर दिए सी हूँ ब्रह्म बृहत्वात् बृंगणत्वाच तद ब्रह्म परम विदुह जे निजे बृहत है अन्य को बृहत कर दिए सी हूँ ब्रह्म देखुना ब्रह्म संस्पर्शे आ दांडर ना है कौन बड़ दांड बड़ ठाकुर से निजे बड़ ठाकुर संस्पर्शे दांड बड़ दांड संस्पर्शे पथर या देउल बड़ देउल संस्पर्शे यही पंडा गुड़ाक बुलूंट पंडा हो बड़ पंडा संस्पर्शे उदधि महोदधि तेणु जी संस्पर्शे आसी समस्ते बड़ हो जाए बड़ ठाकुर भगवान बर्तमान विजय करतरु बाहर आसुंट आलट पड़ू चामर पड़ू भक्त मैंने चाहक बस कौन भक्त कौन केवल अपेक्षा कर नाकचणा द्वार मुहरे ता नुह आम पाखे ता नुह अगणित भक्त आज्ञा सारा विश्व देखुची ये हूँ विश्व विश्व ठाकुर विश्वलीला या को सारा विश्व आम कह साढ़े चार कोटी लोक आम कह शह शह कोटी लोक सात शह कोटी लोक समस्ते देखुं इंद्र चंद्र वरुण कुबेर मुनि ऋषि आपण देखिए आज जहाँ देखिले एथिरे मन संतुष्ट हलानी कौन देखल आज किसी भाग हूँ आपण देखिए काली राति दसटा बेलू आज्ञा सुवर्णमय बेसरे ऐश्वर्य पुरुष होकर बसी थे सिंह सिंह द्वार कौन देखिए कि रूप तर सर्वरूपमय हे सह सर्वमंत्रमय प्रभु आराध्यते यथा जेन तथा तस्य फलप्रद
2: आमे देखि पारुछु अति सुंदर भावरे वर्तमान कोटि कैवल्यर नाथ अशरण शरण अरक्ष रक्षण विश्व वंदित प्रभु श्री जगन्नाथ से गुंडीचा मंडपर नाकचणा द्वार निकटरे भक्तंक गहणरे अति आनंदर सहित समग्र विश्व को आनंद प्रदान करी से सचिदानंद घन विग्रह आलट चली चामर सेवा चली विभिन्न मठर मठाधीश मानकर चामर सेवार प्रभु से सेवक मानकर कोलाग्रत होई बाहू को बाहू छंदी निजर पिठी को पिठीरे छंदी प्रभु आज झुली झुली आसुछंदी ये हूँ धाड़ी पहंडी मते पचारु थिले टिकिए समय पूर्वरु जने आमर बंधु से ये जो पहंडी प्रभुंकर चली ये को पहंडी ये प्रभुंकर धाड़ी पहंडी श्रोतागण भक्तंक पाखको जेतेबेले भगवान आसंती तांकर मिलित हवा पाई सेतेबेले जो भावना थाए मिसिबा पाई प्रभु दौड़ी दौड़ी आसंती ताहा थिला धाड़ी पंडी किंतु जेतेबेले भक्तंक पाखरो जाई थांती निजर गृह अभिमुखे बा तांकर सेई मंडप निकट को यात्रा करी थांती सेतेबेले सी जानती गोटी पंडी रे काहेकि ना जणंक परे जणे जिबे सेडी रुंधा हेबो पुणी तापरे प्रभु आसिबे ए जो प्रभुंकर नीति लीला आज से लीला देखिबा पाई सोळ कलापूर्ण हेदारु देवता कोटि ब्रह्माण्डर स्वामी तुम पाद पत्ने देह मन आत्मा सदा हेउ अनुगामी आपणंक निकटरे आ सई आपणंकर सेवारे ए संसार आज आपणंकर पाद पद्मरे निजकु ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖି

जय जगन्नाथ जगदर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे बर हूँ लक्ष लक्ष श्रद्धालु आस्था विश्वास और भक्ति भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करने आम समस्त दायित्व से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो जेमिति कि तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु बाहर खोलार बिक्री होउथबा खाद्य

जय जगन्नाथ। सेठी पाई तो स्कंद पुराण रे मध्य कुहा जाई नीलाद्र महती क्षेत्र सर्वलोक एक पावने देवश्री गणगंधर्व यक्ष किन्नर सेविते। ये हूँ से परम पावन क्षेत्र पुण्य क्षेत्र जहाँ यक्ष देवश्री गण गंधर्व समस्त प्रभुंकर सेवार समर्पित होती। आ सेवार गोटे जहाँ हूँ प्रधान कथा ता हेउची प्रेम भक्ति। कारण प्रेम भक्ति जो भक्ति रही चारि भक्ति मध्ये प्रेम भक्ति अटे सार से भक्ति अटे एक ठो गोपी मानकर गोपी को भजिला भक्त प्रेम भक्ति पाई बिना प्रेम भक्ति रे दर्शन मोर नाही। कारण प्रेम भक्ति बिना प्रभुंकर दर्शन नाही। आमे देखि पारुछु से प्रेम भावर बंधन रे बांधी होई प्रभु वर्तमान अति सुंदर भाव रे धीरे धीरे भक्त मानंकु आनंद प्रदान करी से सच्चिदानंद घन विग्रह ताहिया तंकर झुलुची नंदी घोष रथर से बाम पार्श्वरे जो सारथी अछंति दारुक से जो मठ अछंति राधा वाले भी मठ जोठि वर्तमान श्री जगन्नाथ चेतना गवेषण प्रतिष्ठान अनुष्ठित होउछि ता से कार्यालय रहिछि सेई प्रतिष्ठान रे कड़े कड़े प्रभु निजे आसुछंति। आ घंटुआ माने अत्यंत सुंदर भाव रे घंट को मध्य बजाऊ जो उद्घोषण दौंती जहाँ कहुई जे मु नुहे गोष्ठीर मु नुहे बेष्टीर उत्कल अच्छी सत सकल धर्म मोहठारे कूल नुहे जगतर नाथ मु एक नुहे मु गोष्ठीर नुहे मु बेष्टीर नुहे मु उत्कल अच्छी सत मु उत्कल से श्रीमंदिर रत्न सिंहासन अधिष्ठित मुझे महाबाहु जगतर नाथ मुंतु मु समग्र विश्व प्राणी मान पाखे अच्छी से यात्रा परम पावन यात्रा अतीत पावन यात्रा जो यात्रा रे आज साम्य मैत्री बाणी को प्रचार करी वसुंधैव कुटुंबकर जो बाणी जोठी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आज प्रभु आपणे नौ समस्त ए क्षेत्र श्रद्धा बालीर क्षेत्र ए क्षेत्र पुण्यर क्षेत्र ए क्षेत्र परम पावन क्षेत्र नाही दान ध्यान नाही जप तप नाही तीर्थ व्रत किसी नीति नाम ब्रह्मे बिहरी पारे ए जीव को मुख्य अच्छी ए जीव जदि तुम्हें मुख्य पाच केवल मोरी भितर मोरी प्रेम मोरी भाव निजको नियोजित कर। आज कालिया ठाकुर भारी सुंदर देखा जाऊंगी रथजात्रा बेले जितेबले आसीथिले प्रभु तांकर टाहिया नथिला मन मारिथिला भलिया देखा जाउथिले किंतु आज प्रभु तांकर जो मस्तकर टाहिया अत्यंत सुंदर आगठारु आहुरी सुंदर भाव से टाहिया को प्रस्तुत करा जाउछि। आ जो आखि चका चका आखि जो आखिरे सारा विश्व ब्रह्मांड आज व्यापी जाए जो विश्व ब्रह्मांड को व्यापार जो शक्ति आज से कालिया ठाकुर आखिरे रही एमती थानी अपरूप छवि किए देखी सकी के आखि लाख जाए पेट पूरी जाए मर्त्य वैकुंठ जोटी हूँ से मर्त्य वैकुंठर क्षेत्र जो वैकुंठपुर तालध्वज रथर विराजमान करलिया भुज आ माँ सुभद्रा जगत जननी जी पद्मध्वज रथ आ गरुड़ ध्वज रथरे विराजमान करे जगन्नाथ धीरे धीरे पदक पकई पाद पाहुंड पाहुंड पकई चली आसुछंती चारमाल अभिमुखे किंतु घंटुआ माने श्रृंखलित भाव घंट बजाऊंती अनेक नृत्यशिल्पी गोटीपुआ नृत्य ठार आरंभ कर नर्तक एवं नर्तकी से मानकर नृत्यर छंदे से घंटुआ मानकर घंटर तालर ताले से माने मध्ये आज नृत्य सेवा प्रदान करुछंती महाप्रभुंक पाखरे सेवार जो समर्पित भावना प्रभु निकट में प्रभु मत कि चाहूना प्रभु केवल कहते जो जो जाम जाम तनु भक्त श्रद्धया अर्चित इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धा तामेव विदधामि अहम् जी मत जहाँ कि अर्पण कला आज भक्ति भाव में मुकुई केवल मुखेना करी मुकुई केवल ग्रहण करी कारण भाव विनोदिया भावर ठाकुर भक्त वत्सल हरि।